या कि दादा मेरे कि मुस्को डोला कि बीमारी बाजे कि जीस तुरो तार वी लगा सी गिले अबे हाथ तार वी लगा सी गिले अबे हाथ।